0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौं, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: Time check.
3: It's 3 p.m.
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.

धरती भरि नौलो रङ्ग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, धरती भरि नौलो रङ्ग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटुभरि नयाँ लाली लाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटुभरि नयाँ लाली लाइसक्यो।